0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: आकाशवाणी FM रेनबो 107.5।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: Listen to your favorite tracks on Kochi FM Rainbow 107.5. Stay tuned.

0: वेलकम बैक। और देखिए हमारे साथ इस समय कौन है, देखते हैं हम। हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, हमारे साथ कौन है, अपना नाम बताओगे दोस्त?
1: मैं हूँ निकिता पारेकर, पुणे से।
0: निकिता, स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर। कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: बस मैं भी बढ़िया हूँ, और आपसे बात करके और बढ़िया हो गए। अच्छा लगता है जब हम अपने लिसनर से बात करते हैं। तो आज बनी है आप हमारी बॉलीवुड सरताज, बॉलीवुड ट्रेल्स प्रोग्राम की। कांग्रेचुलेशंस निकिता।
1: थैंक यू वेरी मच मैम।
0: कैसा लगता है बॉलीवुड ट्रेल्स आपको?
1: बहुत अच्छा, मैं रोज सुनती हूँ।
0: अच्छा, रोज सुनते हो, तो क्या खास है इस प्रोग्राम में?
1: मुझे जो बॉलीवुड
2: You are listening to 107.5 Rainbow FM, Kochi. Musically yours.

0: किसी का इंतजार,
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो

0: आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: വാണി ആകാശവാണി. ആകാശവാണി ദില്ലി പ്രസ്തുത കർത്താ ഹൈ വിശേഷ ഫോൺ ഇൻ കാര്യക്രം റേഡിയോ ഡോക്ടർ.
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है. आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है. रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ मैं अनुराधा. श्रोतों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है इमरजेंसी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट, यानी वो चिकित्सा सेवा जो अचानक हुई दुर्घटनाओं, गंभीर चोटों, फ्रैक्चर आदि के समय दी जाती है. आपके सवालों के समाधान के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आज दो विशेषज्ञ. आप हैं डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन

0: UCMS and GTB Hospital, New Delhi. Sathi Dr. Tej Prakash Sinha Ji, Additional Professor, Department of Emergency Medicine, AIMS, New Delhi. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर. नमस्कार.
1: नमस्कार.
2: नमस्कार
0: सर. सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि मेडिकल इमरजेंसीज क्या हैं?
1: देखिए, किसी भी स्थिति कोई इंसान अगर सोचता है कि अगर मेडिकल सुविधा ना ली जाए
0: जी.
1: तो उसके या तो जान को खतरा हो या उसके लिम्ब या किसी अंग का खतरा हो या किसी ऑर्गन का खतरा हो. और अमूमन ये स्थितियां ऐसी होती है कि अगर टाइमली मेडिकल केयर ना मिले तो उसको बहुत परेशानी हो सकती है. जैसे आप समझ लीजिए हार्ट अटैक की बीमारी हो गई, कोई छत से गिर गया, या एक्सीडेंट चोट वाली बीमारी है, या चोट हो गया किसी को, किसी ने सांप ने काट लिया, किसी को सांस की बीमारी हो गई
0: जी.
1: किसी को लकवा मार गया. तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपात स्थिति है और इसमें जल्द से जल्द मेडिकल सुविधा लेना अत्यंत आवश्यक है
0: जी. सुविधाएं लेना आवश्यक है ये आपसे जरूर जानेंगे. और बहुत सारी चर्चा अभी तो शुरुआत है और हमारे श्रोता उत्सुक होंगे जानने के लिए कि आज क्या क्या हमारे लिए बहुत कुछ आप दोनों विशेषज्ञों से जानने को मिलेगा. फिलहाल यहाँ ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक.
3: ए भाई दर्द

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके

0: श्रोताओं, आज रेडियो डॉक्टर में हम चर्चा कर रहे हैं इमरजेंसी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट पर। हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: मैम नमस्कार जी।
0: नमस्कार सर, अपना नाम बताएं।
1: जी एक्सपर्ट हो गए दोनों को जी, नमस्कार।
2: नमस्कार
0: जी,
1: जी
0: दोनों
1: मैं यामिन भाई रेडियो वाला तिरोड़ी लोनी जिला
0: जी। सर,
1: आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, लोग तड़पते रहते हैं, पड़े रहते हैं, और लोग सहायता करने में थोड़ा असमर्थ हो जाते हैं कि जिससे कि कानूनी कार्रवाई होती है, तो डरते हैं कि उनका नाम लिखा जाएगा, उनको कार्रवाई में साथ रखा जाएगा। ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक है, मेरा थोड़ा समझाएं।
0: प्राथमिक चिकित्सा आप जानना चाह रहे हैं कि प्राथमिक चिकित्सा क्या दी जाए, और कोई डर की बात तो नहीं है जो लोग ले जाते हैं हॉस्पिटल, ये जानना चाहते हैं आप ना। जी
2: जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि लोग क्यों असमर्थ अपने आप को फील करते हैं और क्यों डरते हैं कि लीगल कार्रवाई या कुछ पुलिस केस या कुछ इससे घबराते हैं। तो अगर मैं जानकारी आपको दूं कि सरकार ने इस पे बहुत सारे कदम उठाए हैं, और एक इस तरीके का एक नियम, लॉ या कहें कि एक गाइडलाइंस सब तरफ से आई है, जिसको हम लोग कहते हैं गुड समेरिटन लॉ। इसमें ये इंश्योर किया गया है कि जो मददगार हो सड़क दुर्घटनाओं में, स्पेशली जो मदद करे, उस पर किसी तरीके का कोई भी कानूनी कार्रवाई या उसको तकलीफ ना दिया जाए। और इसमें सरकार ने इनाम का भी एक सिस्टम रखा हुआ है, और इसको हर अस्पताल अब अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसे लोगों को ना उनसे हम नाम पूछते हैं, ना उनका हम डिटेल लेते हैं। तो ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ा कदम है, ताकि जो चोटग्रस्त मरीज हैं, ट्रॉमा के पेशेंट्स हैं, उनको मदद समय से मिल पाए। तो ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
0: तो इनको आपने जानकारी दे दी, आगे बढ़ते हैं। और अभी हम चर्चा कर रहे थे कि मेडिकल इमरजेंसीज क्या हैं, तो डॉक्टर अरुण सर आपके पास आना चाहेंगे कि सिर्फ इलाज मेडिसिन के तौर पर ही हो सकता है, या कैसे इसकी रोकथाम की जाए, बचाव कैसे किया जाए।
3: जी, मेडिकल इमरजेंसी के दो पहलू हैं। हम एक वाक्य बहुत समय से सुनते आए हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी किसी भी चीज से बचाव अगर हम करते हैं तो उससे होने वाली सारी तकलीफों से बचा जा सकता है। अभी जो मेडिकल इमरजेंसी की बात हो रही है, उसमें जैसे मान लीजिए अभी दुर्घटना की, अभी हमारे कॉलर भाई साहब ने पूछा कि दुर्घटना में हम क्या करेंगे। तो दुर्घटना में सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि दुर्घटना से हम बचें कैसे। अगर हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की, सड़क के किनारे होने वाली दुर्घटना की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सावधानी कम होने से दुर्घटना घटती है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई मोटरसाइकिल चालक और हेलमेट नहीं लगा के चल रहे हैं, या कोई रेड लाइट के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, या एक पेडेस्ट्रियन जो पैदल यात्री हैं वो अपना फुटपाथ छोड़ के सड़क पे आ जाते हैं, तो ये सारी परिस्थितियां होती हैं जो दुर्घटना की संभावना को बढ़ाती हैं। तो पहले ये जागरूकता हो और हम इन नियमों का पालन करें कि हम दोपहिया वाहन पे हेलमेट चला के ही बैठेंगे, हम गाड़ी चलाएंगे तो हम सीट बेल्ट बांध के रखेंगे, और अगर हम सवारी यात्री भी हैं तो भी हम सीट बेल्ट लगाएंगे, और अगर हम सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो हम सिग्नल का, उस पर रेड लाइट और ग्रीन लाइट के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। ये एक उदाहरण हुआ। दूसरी तरफ एक दुर्भाग्य की बात होती है कि लोग अल्कोहल पीकर फिर गाड़ी चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो दुर्घटना का आमंत्रण है। तो कहने का मतलब कि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सकता है, पूरी सावधानियां अगर हम बरतें तो दुर्घटना होने से रोक सकते हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा मेडिकल इमरजेंसी की बीमारियों में। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया, दिल का दौरा पड़ गया, या किसी व्यक्ति को अचानक स्ट्रोक हो गया और उसकी बॉडी पैरालिसिस हो गई, ये सारी परिस्थितियां होती हैं पहले से उपस्थित किसी बीमारी की वजह से। यानी किसी को उच्च रक्तचाप की अगर बीमारी है तो उसको स्ट्रोक हो सकता है, किसी को अगर हार्ट की बीमारी पहले से है तो हार्ट अटैक हो सकते हैं। ऐसे में उस मरीज के साथ साथ उनकी देखभाल करने वालों का ये दायित्व बनता है कि वो ऐसी स्थिति में ना आए। इसके लिए डॉक्टर ने जो सलाह दी है उनकी दवाई को लेके, कि आप निश्चित समय पे नियम से जो दवाइयां बताई गई है वो खाएं, जो आपकी जीवन शैली में परिवर्तन कहा गया, आपके खान पान के बारे में, आपके रहन सहन के बारे में, उनका अगर आप नियम से पालन करेंगे तो आप उस दुर्घटना से होने से बहुत हद तक बच सकते हैं। तो मेरा तो सभी श्रोताओं से कहना ये रहेगा कि आप दुर्घटना होने मत दीजिए, दुर्घटना से बचिए। जहां भी कोई दुर्घटना की संभावना दिखती है, दुर्घटना होने की जो संभावित कारण है उनको दूर कीजिए।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने। चाहे हमारी शारीरिक स्थिति हो या फिर हम कहीं दुर्घटना बाहर शिकार होते हैं, दोनों ही डिपेंड करता है कि हम कितने सतर्क हैं। डॉक्टर

0: ने ये आपको आगाह कर दिया है, फिर भी कोई भी स्थिति आपके साथ आती है तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगी कि ट्रॉमा की चर्चा क्यों ज्यादा होती है इतनी?
1: देखिए, ट्रॉमा भी एक इमरजेंसी है। हम अमूमन कहते हैं कि किसी चीज से चोट लगी, कोई गिर गया, रोड ट्रैफिक इंजरी हो गई, आपस में झगड़ा हो गया,
0: जी
1: ये सारे कारण हैं ट्रॉमा के। चूंकि ये रोड ट्रैफिक इंजरी सबसे कॉमन है ट्रॉमा के कारकों में, और ये 18 से 45 साल का एज ग्रुप जो है उसको ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, और लगभग हर साल हम करीब 1,70,000 से ऊपर लोगों को खोते हैं जो यंग हैं,
0: जी
1: जो हमारे उनके घर के और साथ में देश के कहिए कि ब्रेड अर्नर हैं, कंट्री के लिए काम करने वाले लोग हैं। इसीलिए इसकी चर्चा ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारी यंग पॉपुलेशन को इन्वॉल्व कर रहा है, और ट्रॉमा एक ऐसी स्थिति है जो सर ने भी बड़ा अच्छा बताया, इसको हम रोक सकते हैं।
0: जी
1: ये पहले से कोई बीमारी नहीं है, हम इसको बचाव कर सकते हैं। इसलिए हम ये टोटल जो डेथ है 2.25 लाख के आसपास, इसको हम काफी हद तक कम कर सकते हैं अगर बचाव पे जाए तो।
0: चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे पास जिज्ञासाएं भी बहुत सारी आ रही हैं आज के विषय से जुड़ी हुई। आप हैं मिस्टर रवि जोशी, लिख रहे हैं कि आई नीड बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रॉमा मैनेजमेंट। व्हाट आर फाउंडेशनल गाइडलाइंस एंड रिसोर्सेज इन ट्रॉमा मैनेजमेंट?
1: सो रवि जी, धन्यवाद, आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है। पहले तो ये जान लें कि एक ऐसे ट्रॉमा की स्थिति या चोट वाली स्थिति हो तो करना क्या चाहिए। तो जैसे अगर मैं एक रोड ट्रैफिक इंजरी की एग्जांपल को लूँ, तो सबसे पहले देखना है जो बचाव करने जा रहा हो वो देखे कि क्या मैं सेफ हूँ इस जगह पहुँचने के लिए।
0: जी
1: तो अपनी सेफ्टी पहले देखे, ऐसा ना हो कि एक की जगह दो हो जाए।
0: हुँ.
1: दूसरा कि अब वो जो घायल व्यक्ति है उसको एक सेफ जगह पर ले जाएं। सेफ जगह पे ले जाने के बाद अब दो काम करनी है हमें, एक तो एम्बुलेंस या मदद के लिए कॉल, और दूसरा कि किसी को फ्रैक्चर हो गया है या ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग से बहुत ज़्यादा मौतें होती है, तो ब्लीडिंग हो रही है तो क्या वो दबाव दाग दे के हम रोकें उसको,
0: जी
1: और कोई फ्रैक्चर है तो क्या हम थोड़ा स्प्लिंट कर सकते हैं। जैसे ही मदद आए तो बाकी एम्बुलेंस और बाकी लोग जब आ जाएंगे तो उसकी मदद होगी। तो ये थोड़ा देखना चाहिए। रिसोर्सेस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे और बहुत सारे रिसोर्सेज अभी अवेलेबल हैं, जिसको आप देख के कॉमन पब्लिक एक ट्रॉमा में क्या कर सकती है, इसके लिए सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन में अवेलेबल हैं, आप जरूर उसको उपयोग करें।
0: डॉक्टर साहब, कैसे जाना जाए कि इमरजेंसी की स्थिति है? क्योंकि वो नाजुक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि घर में ही क्योरेबल हो। कैसे जाना जाए कि इमरजेंसी वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है?
1: एक तो ये है कि कोई व्यक्ति जो पहले से ठीक था, अपना काम सारा कर रहा था या बातचीत कर रहा था, उसमें कोई उसको तकलीफ नहीं थी, अब वो कह रहा है कि मुझे तकलीफ हो रही है, और ये तकलीफ प्रोलॉन्ग हो रही, लंबी चल रही है। लंबी कहने का मतलब कि आपको लग रहा है कि 10 मिनट 15 मिनट उससे भी ऊपर जा रहा हो, या लगे कि जैसे बेहोश हो गया कोई, या अचानक से धड़कन बहुत तेज हो गई, या और कोई स्थिति है जैसे किसी को चाकू से कट गया या कुछ हो गया। तो ये सारे आपात स्थिति
0: जी
1: हैं, बर्न
0: जी
1: हो गया,
0: बर्न जी
1: स्नेक बाइट हो गई, किसी ने पॉइजन खा लिया, ये सारे आपात स्थितियां हैं जिसमें हमें हेल्थ की सुविधा या मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।
0: जी तो डॉक्टर साहब, कोई ऐसा नंबर हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे जो कि जिस पर तुरंत हेल्प मिल सके हमारे श्रोताओं को?
1: अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एक आपात स्थिति के लिए नंबर दी गई है 112, सो 112 पे आप कॉल करके मेडिकल हेल्प या किसी भी तरीके की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत होगी तो उसी से एम्बुलेंस को कॉल कर दिया जाएगा।
0: जी
1: अगर आपको लगता है और आपको जानकारी है कि आपके यहाँ ये एम्बुलेंस का नंबर है, जैसे दिल्ली में 102, बाकी जगहों पे 108, ये कॉमन नंबर्स हैं जिसपे लोग फोन करके एम्बुलेंस सुविधाएं लेते हैं,
0: जी
1: तो उससे आप मदद ले सकते हैं।
0: जी तो उम्मीद है श्रोताओं कि आपने ये नंबर्स नोट डाउन जरूर कर लिए होंगे, क्योंकि आज जो विषय है हमारा बहुत ही हटके है और हम लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि ताकि आपको अगर कोई भी जो है इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न होती है तो आप कैसे उससे बचाव कर सकते हैं और किस तरह से आपकी जो दिक्कतें हैं वो आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। अब वापस आना चाहेंगे आपके पास डॉक्टर साहब, कि जो ये सारी स्थितियां हम डिस्कस कर रहे हैं तो बचाव की स्थिति तक पहुंचने के लिए अगर हमें जो पहला ट्रीटमेंट देना होता है घर पे, वो किस तरह से शुरुआत की जाए?
2: जिसे हम फर्स्ट एड कहते हैं या प्राथमिक चिकित्सा है,
0: जी
2: ये निर्भर करती है कि दुर्घटना क्या है। जैसे
0: जी
2: मान लीजिए कि आप घर की बात करें कि घर में कोई बुजुर्ग इंसान अगर बाथरूम में गिर गए,
0: जी
2: तो सबसे ज्यादा रिस्क इस बात की होती कि कहीं उनकी कूल्हे की हड्डी ना टूट गई हो। ऐसे में वहां से सबसे पहले उनको निकाल के सुरक्षित स्थान पे लाके और एक फ्लैट सरफेस पे यानी एक नरम गद्दे की जगह एक हार्ड सरफेस पे उनको लिटाया जाए और फिर ये समझा जाए कि उनको कहाँ दर्द हो रहा है।

0: फिर दूसरी चीज हमें ये देखनी होती कि क्या वहां से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, किसी पार्ट से चोट लग के वहां से कोई खून तो नहीं निकल रहा।
1: जी
0: अगर वो बेहोश हो गए तो वो बता नहीं पाएंगे, तो वो हमें देखना जरूरी है। और जैसा कि डॉक्टर तेज प्रकाश ने अभी बताया कि हमें एम्बुलेंस के लिए या मेडिकल सुविधा उपलब्ध करने के लिए सबसे पहले कॉल कर देना चाहिए कि
1: जी
0: जब तक एम्बुलेंस आएगी या जब तक मेडिकल सर्विसेज आएंगी तब तक हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें वाइटल देखना चाहिए कि उनकी नब्ज चल रही है कि नहीं, उनकी सांस आ रही है कि नहीं, और वो होश में है कि नहीं। अगर ये तीनों सुरक्षित हैं,
1: जी
0: यानी उनकी नब्ज भी मिल रही है, उनको सांस भी आ रही है और वो शायद बेहोश नहीं है, तो हम ज्यादा सुरक्षित स्थिति में हैं। अगर मान लीजिए वो बेहोश हो चुके हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखने की चीज है कि उनको कुछ खिलाने या पिलाने का प्रयास हम ना करें,
1: जी
0: और उनकी सांस हम देख सकते हैं कि उनकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है, नाक के पास उंगली ले जाके हम पता कर सकते हैं कि हवा आ रही है नहीं आ रही है। अगर उनकी गर्दन टेढ़ी है तो हम उसको जरा सीधी करने का प्रयास करें ताकि सांस की नली खुले और उनको सांस आती रहे।
1: जी
0: और ये हुआ एक एग्जाम्पल। दूसरा मान लीजिए कि कोई दुर्घटना हो गई जिसमें बर्न हो गया, बर्न हो गया, बच्चा है वो खेल रहा था, किचन में पहुंच गया, उसकी हाथ में आग लग गई। अब
1: जी
0: वो आग लगने से वो झुलस आ गया है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला कदम ये होता है कि हम उसको नॉर्मल वाटर, जो टैप में पानी आता है, जो नल में पानी आता है, उसके नीचे हाथ रख दें, लेकिन रगड़े ना। क्यों ना रगड़ें? क्योंकि रगड़ने से उसकी जो जली हुई स्किन है वो उतर जाएगी, वो बहुत हानिकारक होगा। सिर्फ ठंडे पानी में, नॉर्मल ठंडे पानी में, बर्फ लगाने की जरूरत नहीं है, उसको साफ कर दें और उसके बाद हाथ को खुला रखें। अब उसमें स्थिति है कि अगर हमारे पास घर में कोई ऐसी क्रीम है, जैसे कॉमनली हम कहते हैं कि फर्स्ट एड किट में किट के अंदर सिल्वर सल्फा डाइजिन ऑइंटमेंट होती है, वो लगा दिया जाए। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो उसको उस हालत में ही रख के
1: जी
0: और हमें डॉक्टर के पास तुरंत ले जाना है, मेडिकल इमरजेंसी में तुरंत ले जाना है। इसी तरह से एक और दुर्घटना होती है घरों के अंदर कि करंट लग गया, कोई कोई लाइव वायर था जिसकी वजह से करंट लग गया। करंट लगने की स्थिति में जो सबसे पहला काम है, जो सबसे एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है कि हम जल्दी से उस इंसान को पकड़ के अलग करना चाहते हैं, ये हम ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी करंट से चिपका हुआ है। हम अगर उसको छूने जाएंगे तो वो करंट हमारे अंदर भी
1: जी
0: आ जाएगा। तो उसमें सबसे पहली चीज होती है कि जिस वायर से और वो करंट आ रहा है, किसी लकड़ी के टुकड़े से या जो ऐसी कोई भी चीज प्लास्टिक हो जिसमें से करंट पास नहीं करता, उसकी मदद से पहले हम उस सोर्स को हटाएं जो जो उसको इलेक्ट्रिक्यूशन कर रहा है। अगर वो हम हटाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, अब हम मरीज के पास जाके देख सकते हैं कि उसकी हृदय की गति तो नहीं रुक गई है या उसको वो बेहोश तो नहीं हो गए हैं, बाकी का इलाज उसके बाद शुरू होगा।
1: जी
0: ठीक है, तो इस तरह की कौन सी इमरजेंसी है इस पे निर्भर करेगा कि पहला एक्शन क्या लेना चाहिए। लेकिन मैं एक बात सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगा, कोई भी दुर्घटना आपके सामने घटती है घबराइए मत, संयम से काम लीजिए और ध्यान रखिए कि मरीज की हम सबसे अच्छी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उसको सुरक्षित स्थान पे ले आएं, उसके आसपास भीड़ ना इकट्ठी होने दें, और फिर उसको जो जिस प्रकार की दुर्घटना हुई है उसमें जो फर्स्ट एड दी जाती है, प्राथमिक चिकित्सा दी जाती, वो हम शुरू करें और एम्बुलेंस बुलाने की व्यवस्था तुरंत करें।
1: जी डॉक्टर अरुण सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बिल्कुल जो है विस्तार से आपने बता दिया। अब जो है समर स्ट्रोक भी आजकल बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या इसमें भी यही प्राथमिक उपचार होगा या कुछ डिफरेंट होगा?
0: नहीं, मैं इसमें दो बातें बोलना चाहूंगा कि देखिए सबसे पहली चीज है कि समर स्ट्रोक यानी हीट वेव से जो स्ट्रोक होता है उसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। जैसे सरकार की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए जाते हैं कि देखिए अभी गर्मी की लहर हो रही है, अभी हीट वेव है, अभी लू का प्रकोप चल रहा है। ऐसी स्थिति में हम पहले सावधानी कहते हैं कि अगर जरूरी नहीं है तो आप बाहर ना जाएं, गर्मी से अपने आप को बचाएं। दूसरी चीज है कि अपनी बॉडी में पानी की मात्रा को निश्चित रखें, आप डिहाइड्रेट ना हो, बॉडी से पानी कम ना होने दें। इसलिए आपको अगर बाहर जाना भी है तो आप फ्रिक्वेंटली समय समय पर थोड़े थोड़े मात्रा में पानी पीते रहें। ठीक है, और तीसरी चीज है कि अगर मान लीजिए इन सब के बावजूद भी हीट स्ट्रोक होता है तो उसके लक्षण को पहचानिए। लक्षण है कि आपके जिसको हीट स्ट्रोक होगा उसके शरीर का तापमान बढ़ने लगेगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 104 डिग्री फारेनहाइट तक टेम्परेचर हो सकता है और उनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। तो सबसे पहले उस इंसान को उस गर्मी की स्थिति से लाके एक छांव वाली जगह में, एक ठंडी जगह पे लिटाएं। अगर वो होश में है तो उनको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाइए, अगर वो होश में नहीं है तो सबसे पहले उनको पानी मत पिलाइए, क्योंकि जो बेहोश है उसको पानी पिलाने का अगर हम प्रयास करेंगे

0: या कुछ खिलाने का प्रयास करेंगे तो सांस की नली में जा सकता है।
1: जी जी
0: इसलिए बेहोश इंसान को हम ये ना करें, लेकिन उसके आसपास हवा हो, ठंडक हो, छांव हो, ये व्यवस्था हम जरूर करें, और उसके बाद एम्बुलेंस आते ही उनको हॉस्पिटल ले जाएं। ये समर स्ट्रोक में बहुत जरूरी। लेकिन फिर मैं इस बात को दोहराऊंगा मेरे श्रोताओं के लिए कि आप ये दुर्घटना ना होने दें, ये जागरूकता रखें, उनको पानी पिलाएं, उनको गर्म, और खास करके दो उम्र के वर्ग में बच्चों को और बुजुर्ग

0: आया हुआ है। सुधीर सिंह कुतुबगढ़ से लिख रहे हैं। नमस्कार सर, जो रोड के किनारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, इन लोगों को पानी पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए? जैसे कोई गिर गया है तो बेहोश हो जाता है, उसे पानी पिलाना चाहिए कि नहीं, जानना चाहते हैं ये।
1: तो बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो ये है कि पानी पिलाने से क्या फर्क पड़ेगा, कोई उससे बेनिफिट नहीं होगी, लेकिन उससे क्या हार्म हो सकता है ये जानना
0: जी,
1: बहुत
0: बहुत
1: जरूरी है।
0: महत्वपूर्ण है जी।
1: अगर वो व्यक्ति बेहोशी की हालत में है, इवन आधे बेहोश हम कहते हैं कि थोड़ा सा उसका जो होश है उतना नहीं है, कम है, तो वैसी स्थिति में अगर देंगे और वो पानी जो है वो सांस की नली में चली गई, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ऐसे मरीज, ऐसे लोग जिनके जिनको दुर्घटना हुआ हो, उसको ना कुछ पिलाएं ना कुछ खिलाएं,
0: जी
1: और बेहतर हो कि उसको बिठा के ना रखें, लिटा के रखें। सो बहुत बार हमने देखा है कि कोई गिर गया हो प्रार्थना में, जैसे बच्चे गिर जाते हैं और उसको फिर हम बिठाते हैं ऑफिस में, कभी कोई गिर गया उसको बिठाते, बिठाना नहीं चाहिए, हमें उसको लिटा के रखना चाहिए। तो सेफ प्लेस पे, जहां पे आपको लगता है कि ये प्लेस अच्छा है, वहां पे लिटा के उसको रखिए और मदद के लिए आगे कॉल करिए
0: जी
1: नेक्स्ट स्टेप में।
0: तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, आगे भी ये सवाल जवाब जारी रहेंगे और समाधान भी जारी रहेंगे। फिलहाल यहाँ लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ अनुराधा और आज हम चर्चा कर रहे हैं इमरजेंसी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट पर और हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं आज के विषय में विस्तार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 MHz। कुछ ही देर में साथियों, अब हम सुनने जा रहे हैं विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग। आइए सुनते हैं इस विशेष कार्यक्रम को।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना जी, जो आकाशवाणी दिल्ली में उप निदेशक कार्यक्रम के पद पर कार्य कर चुके हैं। वे मूल रूप से जम्मू कश्मीर से हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे हैं, साहित्यकार हैं, बहुत सी काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुकी है और पुरस्कृत भी हुई है। इन्होंने कश्मीर की संस्कृति, लोक कला, लोक संगीत और साहित्य को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आकाशवाणी में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने अनेक सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का सफल संचालन और निर्माण किया। आज हम उनसे आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा, उसकी सांस्कृतिक भूमिका और उनकी व्यक्तिगत स्मृतियों के बारे में बातचीत करेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, अपने शुरुआती दिनों की कोई विशेष स्मृति जो हमारे श्रोताओं के साथ आज यहाँ आप साझा करना चाहें।
1: आकाशवाणी के जो 90 वर्षों का सफर है, मैं उसके लिए शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मूल रूप से आकाशवाणी का उद्देश्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी जो हम लोक सेवा करते हैं आकाशवाणी के माध्यम से, वो जन जन

0: तक वो संदेश जाते हैं और सभी जो देशवासी है उनके लिए आकाशवाणी के कार्यक्रम बहुत ही लाभदायक होते हैं।
1: सर, जो आप अपने शुरुआती दिनों की कोई विशेष स्मृति जो आकाशवाणी से जुड़ी हो आपकी।
0: मैं मूलतः तो मैं कश्मीर से हूँ। मेरे जीवन के जो प्रारंभिक 30 वर्ष हैं वो श्रीनगर कश्मीर में बीते हैं और उन दिनों रेडियो कश्मीर श्रीनगर हुआ करता था, अब आजकल वो आकाशवाणी श्रीनगर हो चुका है। आकाशवाणी से मेरा शुरू से इसलिए रहा है कि मेरे पिता रेडियो कश्मीर श्रीनगर में बहुत ही प्रसिद्ध प्रसारण कर्मी रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन रेडियो कश्मीर से ही प्रारंभ किया है, तो चूंकि परिवार में मेरे पिता थे रेडियो में, तो मुझे भी वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे जीवन में भी उसका प्रभाव आ गया। मेरा डॉक्टरेट का विषय था, वो था साठोत्तरी हिंदी तथा कश्मीरी कविता में आधुनिक संवेदना, और साथ साथ में मैं चूंकि रेडियो आता जाता रहा है, कार्यक्रमों में मेरी कहानियां कविताएं और अन्य जो वार्ताएं हैं रेडियो कश्मीर से प्रसारित होती रही है। इस तरह से शुरू में मैं श्रीनगर में आकाशवाणी से जुड़ गया।
1: हम ये भी जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है वो आकाशवाणी के माध्यम से आपको प्रस्तुत करने का अनुभव कैसा रहा?
0: रेडियो कश्मीर में मैंने व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर कोई नौकरी नहीं की है, लेकिन जब कभी वहाँ के जो उत्सव है, वहाँ जो लोक संस्कृति है, वहाँ के जो लोक गीत है, उन पर बीच बीच में मैं अपनी वार्ताएं अपने कार्यक्रम देता रहा है अलग अलग कार्यक्रमों में। शुरुआत में मैं जो युवाओं के लिए यानी युवा वाणी कार्यक्रम जो प्रसारित होते थे उनमें मैं भाग लेता रहा, तो उनमें उस तरह से मैं जुड़ता रहा। यानी ये तो कश्मीर की बात है, लेकिन 1983 में जब मैं आकाशवाणी में मैंने प्रवेश किया एज प्रोग्राम ऑफिसर कार्यक्रम अधिशासी के रूप में, मेरा सिलेक्शन UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से हुआ। मेरा पहला प्रवेश जो नौकरी के रूप में हुआ वो आकाशवाणी दिल्ली में हुआ था, उस दिन 28 फरवरी 1983 का दिन था, तो वो मेरा पहला दिन था आकाशवाणी के प्रसारण भवन में। वहां से मुझे अपने जीवन का और प्रसारण कर्मी के रूप में मैंने आरंभ किया है। और दूसरी बात की, चूंकि दिल्ली राजधानी है और दिल्ली में बहुत सारे बड़े बड़े साहित्यकार बड़े बड़े विचारक हुआ करते हैं, तो उनको वहां पर आने का अवसर मिलता था, वो अपने कार्यक्रम में यहाँ पर आकाशवाणी दिल्ली से भाग लेते थे, और उनसे भी मुझे मिलने का अवसर मिला। उनके सानिध्य में मुझे बहुत प्रशिक्षण मिला और सीखने को मिला। इस तरह से वहां से मेरी आकाशवाणी की विधिवत रूप से यात्रा शुरू हुई।
1: समय है एक म्यूजिकल ब्रेक का, तो सर आपसे आपकी पसंद का कोई गीत सुनना चाहेंगे।
0: आप जानते हैं कि हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कल ही था, तो इसलिए इस अवसर पर मैं एक बहुत अच्छा गीत है, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन।
1: बिल्कुल।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना जी। सर, आपने साहित्य विशेषकर काव्य लिखन किया है, बहुत सी पुस्तकें आपकी छप चुकी हैं, तो आकाशवाणी ने आपकी इस प्रतिभा को निखारने संवारने में कैसे मदद की?
1: देखिए, मैं मूलतः नाटकों में मेरी बहुत ही अभिरुचि थी। कश्मीर में मैंने कम से कम 10-12 साल थिएटर का काम भी किया, बहुत सारे नाटकों का निर्देशन किया, बहुत सारे नाटक लिखे, आकाशवाणी से भी वहां प्रसारित होते रहे। और कवि इसलिए मैं बना क्योंकि मेरे पिता कवि थे और उनका प्रभाव मेरे ऊपर बहुत आ गया। 1980 में मेरा पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका था, चीख भी एक भाषा है। वो दिल्ली से वो पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी और उसके बाद जब मैं 1983 में दिल्ली आया, उसके बाद मेरी वो काव्य यात्रा भी आकाशवाणी के कार्यों के साथ साथ वो चलती रही। आकाशवाणी के कविताओं के कार्यक्रम थे, उनमें बहुत सारे कवि, उनको हम आमंत्रित करते थे, उनके सानिध्य में आने का, उनके मार्गदर्शन में आने का मुझे मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है कि कार्यक्रम अधिशासी के रूप में सर्वभाषा कवि सम्मेलन जो आकाशवाणी से हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या जिसका प्रसारण होता है, उसमें मैंने अनुवादक कवि के रूप में भाग लिया और साथ में कार्यक्रम अधिशासी के रूप में सर्वभाषा कवि सम्मेलन था उसका इंचार्ज होने का भी मुझे अवसर मिला है। कई वर्षों तक मैंने वो कार्यक्रम भी देखा है। इस तरह से साथ साथ में मेरी कविताओं की यात्रा भी चलती रही और 1990 में जब कश्मीर में निर्वासन हुआ कश्मीरी पंडितों का, मेरा एक काव्य संग्रह तैयार हो रहा था आत्मदाह, तो उसमें निर्वासन पर भी कविताएं हैं और 1991-92 में उसको फिर राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस तरह से कविताओं की यात्रा भी मेरी चलती रही।
0: और साथ ही सर, हम आपसे कोई आपकी ही कविता सुनना चाहेंगे।
1: एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, ये माँ को समर्पित है। इसका शीर्षक है, तुमने ही तो कहा था। तुमने ही तो एक दिन कहा था माँ, जब भी सदी का व्याकरण आदमी की भाषा में रद्द हो

0: लगेगा तो अवश्य एक ऐसा हाथ उगेगा जिस पर रेखाओं के बदले लिखा होगा तदात्मानम सृजाम्यहम, मगर इस भाषा में अभी तक कोई भी हाथ नहीं उगा मां। हाथ उगे असंख्य कटे हाथ, नारों की शक्ल में ऊपर उठ उठ कर खोजते रहे अपने भाग्य को, क्योंकि उस पर न कोई भाग्य ही लिखा था न ही इस सदी की कोई भाषा। ये कविता मैंने आपके समक्ष रखी, ये मेरी पुस्तक में प्रकाशित हो चुकी है।
1: बहुत बढ़िया कविता है सर। आपने आकाशवाणी के बदलते स्वरूप को काफी करीब से देखा है, आपके अनुसार समय के साथ इसमें क्या मुख्य परिवर्तन आए हैं?
0: आकाशवाणी को मैंने श्रीनगर में भी देखा और मैं बहुत ही गर्व के साथ कहता हूँ, हालांकि मैंने रेडियो कश्मीर श्रीनगर में व्यक्तिगत रूप से काम नहीं किया है, लेकिन उन दिनों रेडियो कश्मीर श्रीनगर को पूरे आकाशवाणी सिस्टम में एक मॉडल स्टेशन के रूप में माना जाता था। बहुत बड़े बड़े प्रसारण कर्मी, विचारक, नाटककार और अन्य विभागों के जो कार्यक्रम अधिकारी थे रेडियो कश्मीर में, एक तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और सही मायने में प्रसारण क्या होता है और लोगों के लिए जो जन जन तक पहुंचने के लिए प्रसारण का जो दायित्व है वो कैसा रहना चाहिए, किस तरह से कार्यक्रमों का निर्माण करना चाहिए। और उसके बाद दिल्ली में आकर मुझे एक बड़े फलक पर काम करने का मौका मिला, क्योंकि रेडियो कश्मीर में तो केवल कश्मीर के लिए वो कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन जब मैं दिल्ली आया तो राजधानी के रूप में आकाशवाणी दिल्ली का रोल ये था कि दिल्ली के लोगों के लिए तो कार्यक्रम होते ही थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम हुआ करते थे वो आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होते थे, अब भी होते हैं, उसका स्वरूप इतना बड़ा था और उस स्वरूप में मुझे काम करने का मौका मिला और उसमें बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसारण हुआ करते थे। और आपको मालूम है कि जो गणतंत्र दिवस परेड की जो कमेंट्री होती है या स्वतंत्रता दिवस की कमेंट्री होती है, ये बड़े बड़े जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं उनका निर्धारण और उनका ब्रॉडकास्ट दिल्ली से ही होता है, तो इस तरह से उस आयाम में मुझे काम करने का मौका मिला। बीच में मेरे लिए सौभाग्य की बात रही कि एक दो साल मुझे आकाशवाणी मथुरा में जो एक स्थानीय रेडियो स्टेशन है उसमें व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रम प्रमुख के रूप में काम करने का मौका मिला, तो ये मैंने सीखा है और ये स्वरूप बदलते हुए देखा कि किस तरह से जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए किस तरह से कार्यक्रमों का प्रसारण और निर्माण करना चाहिए। तो इस तरह से हर पग पर आकाशवाणी का स्वरूप बदलता गया और खास करके जब तक FM गोल्ड और FM रेनबो नहीं हुआ करते थे, बहुत ही सीमित चैनल्स हुआ करती थी आकाशवाणी में। मुझे याद है उन दोनों दिल्ली ए दिल्ली बी इस तरह से विविध भारती तो था ही, या विज्ञापन प्रसारण सेवा उसका दूसरा स्वरूप था, और उसके बाद जब FM चैनल्स आने लगे तो उस तरह से कार्यक्रमों का स्वरूप और उनका आयाम और उनका जो टारगेट ऑडियंस है वो बदलने में, क्योंकि FM खास करके युवाओं के लिए बहुत ही लाभप्रद रहा, उसमें उनकी भागीदारी रही और व्यक्तिगत रूप में उनमें युवाओं को आमंत्रित किया गया कार्यक्रमों का प्रसारण करने में। इस तरह से चूंकि मेन उद्देश्य जो जैसे मैंने पहले कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, ये पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के लिए है, यानी हमारा उद्देश्य है कि जन जन को सूचित करना है, उनको संदेश देना है और उनके बेटरमेंट के लिए, उनको इसके माध्यम से शिक्षित करने के लिए कार्यक्रमों का निर्माण करना है, और चाहे वो FM हो या प्राइमरी चैनल हो या दिल्ली ए जो पहले हुआ करती थी बाद में उसका नाम बदल दिया गया, इंद्रप्रस्थ चैनल वो अलग से फिर बन गया, लेकिन कार्यक्रमों के जो भीतर अंतर्निहित जो उद्देश्य है वो यही है कि हमें पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग करनी है।
1: समय है एक और पसंद के गीत को सुन लिया जाए, तो सर एक और आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए।
0: जगजीत सिंह मेरे प्रिय गजल गायक हैं।

0: लेकिन बंगाल में तो तुमने मीर जाफर को नवाब बनाया है, फिर हमारे फरमान से क्या मकसद है?
1: यो मैजेस्टी, नवाब और शहंशाह में जमीन आसमान का फर्क होता है। सारा मुल्क का असली मालिक तो आप ही है। आपका फरमान हमारे लिए बहुत इज्जत का बायस होगा। इसके लिए हुजूर का रियाया कंपनी हुजूर को 26 लाख रुपया सालाना खिराज अदा करती रहेगी।
0: लेकिन अंग्रेज कंपनी हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में भी मदद करेगी या नहीं?
1: जरूर योर मैजेस्टी, लॉर्ड क्लाइव साहब ने भी यही कहला के भेजा है, वो जरूर मदद करेंगे।
0: ठीक है ठीक है, हमें मंजूर है। तुम अपनी तरफ से दस्तावेज तैयार कर लो, हम भी दीवानी का फरमान बहुत जल्द जारी कर देंगे।
1: शुक्रिया योर मैजेस्टी, खुद हमको इजाजत बख्शे।
0: इजाजत दी जाती है।

0: लो नवाब मुनीर, ये क्लाइव का जवाब भी आ गया। वो हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में मदद करने के वायदे से फिर गया है। यही तो एक अहम शर्त थी सुलह की, आज 5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई।
1: जी आलमपना, इधर इस अंग्रेज कमांडर बार करके दिनों दिन दिमाग बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे मुलाजिमों से बदसलूकी से पेश आता है, कहता है हम तुम्हारे बादशाह को 26 लाख रुपए वजीफा देते हैं।
0: अच्छा कमांडर तैनात किया हमारी हिफाजत को, एहसान फरामोशों ने 26 लाख सालाना देकर हमें खरीद लिया है। बंगाल की दीवानी से करोड़ों रुपए हासिल कर रहे हैं, उसका कोई एहसान नहीं।
1: हुजूर, वो कहता है कि हमारी इजाजत के बगैर कोई शाही मुलाजिम इलाहाबाद से बाहर नहीं जाएगा।
0: गोया हम शहंशाह नहीं, इस कमीने कमांडर के कैदी हो गए।
1: लेकिन जब आलम पना के हुजूर में पेश होता है तो वो मेमना बन जाता है, जमी बोस करेगा, योर मैजेस्टी की रट लगाया जाता है।
0: मगर ये कमबख्त मेमने की खाल में भेड़िया है, भेड़िया।
1: अलीजा, अब तो मराठों के जवाब का इंतजार है। सैफुद्दीन खां को कई महीने हो गए माधोजी सिंधिया के पास गए हुए।
0: देखो क्या होता है, अब तो हमें जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचने की तमन्ना है। साबता खां किले पर काबिज है और उसका रवैया दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है।
1: जी आली कदर, वो
2: आलम पना, सैफुद्दीन ने पैगाम भिजवाया है कि मराठों ने हुजूर के शरीक दौलत होकर मदद की रजामंदी दे दी है। सिंधिया की फौजें रवाना हो चुकी हैं और यहां पहुंचने ही वाली हैं। उन्हीं की मदद से सैफुद्दीन मोहम्मद खान ने दिल्ली पहुंचकर जामा मस्जिद से हुजूर के शहंशाह होने का ऐलान भी कर दिया है।
0: वाह वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। मंजूर, सब सरदारान और उमरा से कह दो कि कूच की तैयारी करें।

0: पना, अब दिल्ली दूर नहीं।
1: ये कौन सा मुकाम है मंजूर?
0: आलम पना, ये मौजा धनौली है। यहां से शाहदरा करीब 4 मील है।
1: ओहो, तब तो दिल्ली आन पहुंचे। अरे, ये इतनी शानो शौकत से किसका जुलूस चला आता है? मंजूर, जरा पता लगाओ।
0: आलमपना, ये आली जाह वली अहद शाहजादे और बुजुर्ग बेगमे हुजूर के इस्तकबाल को आते हैं। जाब्ता खान हुजूर के खौफ से किला छोड़कर भाग गया है और उसकी सिपह भी सिर पर पैर रखकर भाग रही है।
1: वाह वाह, बहुत खूब।
0: और आलमपना, सारा इंतजाम मुकम्मल है। अब हुजूर का जुलूस शाहदरा से दिल्ली दरवाजे होकर लाल किले में दाखिल होगा।
1: लगता है मंजूर, आज हमारी मुरादें पूरी हुई और उम्मीदें भर आई।
0: हुजूर, वली अहद ने बताया है कि जाब्ता खां फौजें जमा कर रहा है।
1: वो है कहां? कहां तैयारी कर रहा है?
0: जी, वो नजीबाबाद है।
1: ठीक है, दिल्ली में तख्त नशीनी के फौरन बाद हम उस पर चढ़ाई करेंगे और बगावत की सजा देंगे। हमने माधोजी सिंधिया से भी मशवरा कर लिया है, वो भी हमें पूरी इमदाद देने को रजामंद है।

गुलाब की पंखुड़ियाँ। अभी आप सुरेंद्र कांत के लिखे इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। निर्देशक मुमताज शकेब। आपको बता दें कि इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: Sound, camera, action!
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आज सुनिए पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया। जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: होया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलग गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स

0: दूर है।
1: वो पढ़े लिखे भी नहीं।
0: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
0: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी? तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टेरेंस, ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों करोड़ों सुनने वाले कर रहे हैं जो आपके फैन भी हैं। कितने लोग आपके ऐसे लोग दीवाने हैं जिनको डांस का डी भी नहीं मालूम है, लेकिन वो टेरेंस के दीवाने हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो श्रोताओं हैं और जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्या किया कि इतना प्यार मुझे मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार अपने आप को फील करवाता हूँ, और बहुत मैं कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है। मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं कि मैं इस प्यार का हकदार बनूं। सो
1: मैं आपको बताऊँ, ये बात मैं जानता हूँ कि क्यों है आप इसके हकदार। उसका कारण सिर्फ आपका डांस नहीं है, आपकी शख्सियत है, आपका स्वभाव है, आपकी विनम्रता है, आपका प्यार बांटने का सलीका है।
0: शुक्रिया।
1: ये इंसान को बहुत लोकप्रिय भी बनाता है, प्यारा भी बनाता है, और जिंदगी में काफी ऊंचाई तक ले जाता है। और अभी तो आपके लिए बहुत से आसमान बाकी हैं, बहुत से आसमान छूने हैं आपको।
0: वो तो जरूर है। और अगर दर्शक और श्रोताओं का अगर प्यार ऐसा मिला तो जरूर बहुत सारे जो मकाम जो मैं अपने लिए बनाए रखा हूँ इस उम्र में भी शायद वो मुकम्मल हो जाए।
1: तो चलिए, आपने उम्र की बात की है तो श्रोताओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, और ये पहुंचेगी आपकी जन्म तारीख से।
0: हाँ।
1: जन्म तारीख मैं आपकी जानना चाहूंगा, और वो भी इस बात के साथ कि आपका जन्म कब कहाँ हुआ।
0: मेरा जन्म हुआ मुंबई में, और मैं आठवां बच्चा हूँ मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप का नाम है जेवियर और मीडिया लुइस। डैडी मैंगलोर से हैं ओरिजिनली, लेकिन मुंबई में वो 10 साल की उम्र में आए और काम करने लगे, और मम्मी मुंबई से ही हैं। तो हम सभी 8 भाई बहन मुंबई में ही पले पड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 10 तारीख को, 10 अप्रैल 1975। तो मेरी उम्र उसके हिसाब से आज 20-20 में 45 साल की हो जाती है।
1: तो देखिए साहब, 45 साल के जवान, या यूं कह लीजिए नौजवान युवा डांसर के साथ मैं इस समय बात कर रहा हूँ। तो टेरेंस, आप मुझे ये बताएं कि जो बचपन का ये वक्त था मुंबई में, जब आपका जन्म हुआ मुंबई में, कहाँ हुआ, कैसे आपका बचपन बीता।
0: हाँ।
1: और ये डांस का जो एक जुनून आपके अंदर है, ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हो रही है।
0: तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा जन्म हुआ मुंबई में। एक हम रहते थे एक छोटे से बस्ती में, चौल में, हरिनिवास चौल था, पठान चौल भी था, दो दो नाम थे उसके, और बड़ी बसी बस्ती थी। हमारे घर के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पर्दे हुआ करते थे।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो बहुत प्यार मिला, और इट वाज वेरी कॉस्मोपॉलिटन। हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई सिर्फ एक थे नेबर्स।

0: अदरवाइज एक वेरी कॉस्मोपोलिटन वैसा वाला फील था, किसी के भी घर में आना जाना। टीवी नहीं हुआ करता था तभी, सिर्फ
1: हाँ
0: रेडियो हुआ करता था,
1: उस जमाने में तो था
0: ना
1: नहीं।
0: था नहीं। और यू नो लोग बोलते भी हैं कि यार आपने इतने मतलब इतने इतनी चीज़ें सही हैं, आप कहाँ थे और कहाँ आए हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जन्म लिया था मैंने, तो मुझे पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी हो सकता है। मुझे माँ बाप का प्यार बहुत बेशुमार मिला और लोगों का प्यार बहुत ज़बरदस्त मिला, और यही वजह थी, ये प्यार जो मुझे मिला ये मेरे डांस की वजह से मिला। और जब मुझे वो मिला, वो बेशुमार मिला, मेरे यू नो इर्द गिर्द जो यू नो नेबर्स थे या जो मेरे समाज के जो लोग थे, वो मुझे बहुत ही एक ऊंची नज़र से देखते, क्योंकि मैं गाता था, एक्टिंग करता था, कॉपी करता था जो भी दिखता था टीवी पे या फिल्मों में, या डांस करता था, तो किसी की भी शादी होती तो मुझे बुला कहते, आजा बुला बुला उसको, बुला उसको बुलाओ, ये नाचेगा हमारे लिए।
1: तो जरा तो क्यों ना अभी मैं भी कहूँ कि आज टेरेस आए, अभी टेरेस से गए, नाचेंगे तो नहीं लेकिन गाना तो सुना सकते हैं।
0: अरे वो जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, लेकिन बस मुझे स्टेज पर का बहुत बड़ा लगाव हुआ था, क्योंकि मैं 6 साल का था जब मैं अपने पहले स्कूल में मेरी भर्ती हुई थी। नया स्कूल था मेरा, बांद्रा में मेरा स्कूल था, सेंट टीजर्स हाई स्कूल, तो मैं रहता था अंधेरी में, लेकिन क्योंकि मेरी माँ बांद्रा में रहती थी पहले, शादी होने के पहले, तो हमें भर्ती किया गया था एक कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट टीजर्स हाई स्कूल, हम 4 भाई वहीं पर पढ़े। तो वो स्कूल में 6 साल की उम्र में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और आई थिंक सीनियर केजी में, नॉट इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5 साल का था। तो टीचर आई और उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चे लोग कौन हिस्सा लेना चाहेगा सिंगिंग कंपटीशन में। किसी का हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ उठा, और मेरे में बचपन से वो यू नो ऑलवेज थिंक कि पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मैं एक खुश यू नो एनवायरनमेंट में पला पड़ा। यू नो बहुत सारा तनाव था, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कठिन थी, डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था, लोगों का प्यार बहुत था, और कभी कभी बच्चों के लिए उनको कुछ पता नहीं कि कितना क्या अमीर है क्या गरीब है उनके, आई थिंक आई डिडंट रियलाइज दैट, आई वॉज जस्ट हैप्पी, और मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता था। फिर दूसरी टीचर आई, बोला कि डांसिंग में कौन पार्टिसिपेट करना चाहता, मेरा हाथ उठ गया। तो ऐसे करते करते मैंने 8 जो भी कॉन्टेस्ट थे, ड्रॉइंग सिंगिंग एलिक्यूशन, पार्टिसिपेट कर दिया। बड़ी बहन जो थी वो मेरी देखभाल करती थी, मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये कर दिया, उन्होंने बोला अच्छा लेकिन अभी अभी मैं कैसे सिखाऊं, मुझे तो ये सब आता नहीं है, तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूंगा, तो मैंने कुछ भी कर लिया जो मुझे आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ शायद कर लिया, तो मुझे पहला नंबर लग गया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पहली बार मैंने वो कोशिश की और वो सफल हुआ, और फिर जो तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी और जो मुझे पुरस्कार मिले, यू नो जब 2 महीने बाद प्रिंसिपल ने यू नो सर्टिफिकेट सब साथ में इकट्ठा, एक एनुअल डे होता है तो सभी सर्टिफिकेट साथ में मिलते हैं उस दिन पर, तो मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था, तो एलिक्यूशन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब में मैंने भाग लिया था, मैथमेटिक्स में सब में लिया था, तो वो जो खुशी, वो जो हाई, जो नशा मैंने फील किया, वो मेरे जहन से आज तक उतरा नहीं है। तो मैं मौका ढूंढता हूँ कि कब मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा कि मैं अपना फन या जो भी मेरा टैलेंट है मैं दिखाऊंगा, लोग मुझे वाहवाही देंगे, तो शायद उसकी लालच में मैं स्टेज का दीवाना हो गया।
1: अरे इतनी चीजें याद हैं आपको बचपन
0: हाँ।
1: की, तो वो गाना भी याद होगा जो आपने गाया था उस समय। चलिए गाइए तो गाना तो बताइए।
0: तो वो अंग्रेजी गाना था, बोनियम,
1: बोनियम का,
0: हाँ बोनियम, 1975 में,
1: हाँ
0: तो एक गाना था, ब्राउन गर्ल इन द रिंग ट्रा ला ला ला ला, सो वो वाला गाना था, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर हिंदी गाना जो गाना गाया था मैंने, वो पिक्चर थी एक यू नो हिंदी फिल्म की थी, जो शायद मेरे शादी का ख्याल,
1: सौतन।
0: सौतन। तो वो पिक्चर मैंने, वो रेडियो पे चल रहा था 80s में, तो मैंने वो गा दिया, तो वो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो ऐसे यू नो फिर अजीब दास्तां है,
1: हाँ
0: अजीब दास, मेरी बहनें रेडियो पे सुन के वो पुस्तक में लिखती थी, क्योंकि लिरिक्स सब उनको चाहिए था, तो वो
1: जी
0: लिखती थी, तो मेरी बहन की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं वो दोनों, वो हर गाना जो आता था, वो हमारे पास टेप रिकॉर्डर भी नहीं था, सिर्फ रेडियो, तो वो हम 2-3 बार सुनते थे रात, ताकि वो यू नो वो लफ्ज़ जो बोले गए हैं वो सही सुने हैं कि नहीं, तो वो भी गाते थे हम भी गाते थे, तो हमारा टाइम पास ऐसे ही होता था घर में, तो वही
1: गाने
0: चीज़
1: याद भी हो जाते थे।
0: याद हो जाते थे। तो ऐसे बोलते बोलते मैं अजीब दास्तां के लिए मैंने बहुत बार यू नो पुरस्कार बहुत बार मिला है, और वो गाना ऐसा है कि सबको बहुत प्यार लगता है। तब मेरी आवाज यू नो एक छोटे बालक की तरह था, बहुत ही स्वीट, बहुत ही पतली, एंड इट वॉज सूटिंग दैट सॉन्ग।

फिर बाकी जाके आगे बहुत अलग अलग गाने गाए, बट कभी ट्रेंड नहीं हुआ था और डांस का शौक बहुत कभूत चढ़ गया था और बहुत यू नो वाहवाही मिल रही थी, तो मैं उस लाइन में घुस गया डांस की लाइन में।

0: देखिए दास्तान तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अजीब है
1: लेकिन मेरी माँ की नजर से बहुत ही अजीब हूँ
0: लेकिन हमारे
1: मैंने कुछ भी मैंने कोई भी चीज जिंदगी में जो जो नो जो रेगुलर चीज होती है जो सब बच्चे करते हैं मैंने कभी नहीं किया। जो चीज लोग नहीं कर रहे मुझे वही करना है।
0: लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है
1: क्योंकि आप आर्टिस्ट वाले लोग हैं ना।
0: हाँ।
1: आप हमारे जैसे लोग हैं, आप समझते हैं, लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास है, सिंपल पढ़ाई करो, जाओ गवर्नमेंट की नौकरी लेके आओ और यू नो सुखी रहो, तो उनके लिए ये सब चीजें अमीरों का शौक है, सिंगिंग डांसिंग। मुझे बहुत मार

0: मार नहीं पड़ती थी, लेकिन मेरी माँ बोलती थी मत कर, चाहे तुम फर्स्ट भी, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। और पढ़ाई में भी मैं होशियार था। तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बात हुई, तो मैं बहुत झगड़ता था कि नहीं मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा, और मैं आपको लिख के देता हूँ कि मैं अपना नंबर जो पहला आया है उससे ज़्यादा लेकर आऊँगा, लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकती। तो मैं बहुत थोड़ा यू नो जिद्दी भी था, तो और रिजल्ट भी लेके आता था, पढ़ाई में मेरा बहुत बहुत होशियार था। फिर मेरी टीचरों ने मेरी माँ को डांटा एक बार कि आप क्यों ना बोल रही हैं, पढ़ाई में भी अच्छा करता है वो और हमारी स्कूल की शान है ये। तो फिर मेरी माँ चुप हो गई वहां से। फिर और मतलब अगर तू कुछ भी हुआ फिर मेरे पर नहीं आना चाहिए। ऐसे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: बाकी के भाई बहन इस कोई शौक नहीं था डांस या म्यूजिक का?
0: आई थिंक शायद होता भी, तो आई थिंक वो इतने यू नो आई थिंक उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं था, या मुझ में ना बचपन से लेके, क्योंकि मैं वो जीत गया तो वो नशा चढ़ गया, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, तो
1: फिर
0: इसकी वजह
1: आपने
0: से वो आगे बढ़ गया। तो मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा लकी हो गया, वो एक तुक्का ना, एक लॉटरी पहले ही लग गई, तो उसकी वजह से वो ना एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, जब अपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, चाहे आप लड़खड़ाएं और चाहे आप उसकी दूसरी बार हार भी जाए, कई बार हारा भी उसके बाद, लेकिन वो एक फील होता है कि हाँ मैंने ये कर लिया है। एक बार आपने स्टेज पर चढ़ गया ना आप, तो वो डर जो होता है ना,
1: वो निकल जाता
0: हाँ, तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है यू नो स्टेज पर चढ़कर बात करना या एलिक्यूशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आते नहीं है सामने। बहुत सारे अरमान है लेकिन वो लोगों से डरते हैं, वो डर मेरा चला गया। तो वो स्टेज पर जो डर होता है ऊपर चढ़ के लोगों को देखकर, वो अपने आप को यू नो एकदम यू नो जो भी है आपके अंदर जो टैलेंट जो फन है वो बताना, कभी कभी लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देखकर कि उनके विचार क्या होंगे, वो जजमेंट क्या होगा, अगर वो सेल्फ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है। तो मैं शायद

0: टेरेंस, अब थोड़ी सी हमें एक लीप लेनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी छलांग लेनी पड़ेगी और हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए?
1: हम मध्यम वर्ग के लोग थे तो पिताजी ने हम सभी भाई बहनों को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी निकल जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे क्योंकि उनके डैडी ने उनको आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला था कि अब मेरा काम हो गया है, तो मेरे डैडी ने 5 साल और बढ़ा दिए और बोला कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए कुछ भी, अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे उन सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मेरा डांस का लगाव बहुत ज़्यादा था, लोग जानते थे कि मैं डांस करता हूँ, तो मेरे एक दोस्त ने, उसकी 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन देती थी, उनको डांस सीखना था तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया, बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को, यू नो, कॉलेज फीस और सभी जो यू नो चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए, उससे ज़्यादा मैंने बहुत कुछ पाया तो मेरी लॉटरी लग गई।
0: यानी ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल
1: होगी? 17 साल की थी।
0: यानी उस उम्र से आप डांस सिखा रहे हैं?
1: और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। तो 10

0: भी में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया था।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: तो हमारे घर में हमारी बहनें थी, मेरी चार बहनें थी, मेरे तीन भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे। तो जब भी उनका उन पास टाइम नहीं होता था तो उन लोगों ने मुझे बच्चे जो उनका एक्सेस थे उन्होंने कहा आप ले लो, यू नो, ये आप पढ़ा दो और ये आपकी जो भी फीस है ये आपके लिए।
1: अब जैसे मैं कह रहा था आपकी दास्तान के बारे में दिलचस्प, मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है। इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन संघर्ष का नाम है, और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुइस।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो टेरेंस, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप जब आप डांस सिखा रहे थे, लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे यार? सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
0: एग्जैक्टली, क्योंकि देखो मैं पढ़ाई में होशियार था, तो मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था, तो

0: संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप जब आप डांस सिखा रहे थे, लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे आप? सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
1: एग्जैक्टली क्यों, देखो मैं पढ़ाई में होशियार था, तो मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था, तो मेरा 88% निकल गया था। फिर मैं 3 मार्क्स की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए। फिर वहाँ से छोड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया और मेरी डांस की ट्यूशन मैं देता गया, क्योंकि पैसे अच्छे मिल रहे थे। जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट भी फिनिश किया 3 साल का, और मुझे नौकरी भी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब जो नौकरी लगने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे, उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने। मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूं तो मैं शायद सफल हो जाऊंगा। मेरे माँ बाप को डर था कि ये जो नौकरी है घर घर जाके, ये इसमें कोई मैं हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू इतना होशियार बच्चा था, तू डॉक्टर बनने वाला था, और फिर तू माइक्रोबायो बायोस्ट्रीमिया, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुम अभी डांसर बन रहे हो। तो वो उनके लिए तौहीन की बात थी, क्योंकि हमारे परिवार में डांस के एक एक लग्जरी है, ये ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें। तो वो मेरे पेरेंट्स का मानना था, मेरे पिता और माता का, और मेरे भाई बहन भी जो साथ हैं वो सभी एक मतलब इधर टीचर है या फार्मेसी में है या इंजीनियर है मेरे भाई या बैंकर है, तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड जॉब में है। मैं थोड़ा हटके सोच रहा हूँ, तो उन्होंने सब ने ना कर दी। मैंने बोला कि नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे जो करना है करना है, वैसे भी मैं आपसे ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये नौकरी नहीं लूंगा। तो सब लोग मेरे दो मेरे भाई बहन थे, तू गिरेगा, तू समझ नहीं पा रहा है कि ये फिक्स नहीं है, आज तुम्हारे जो लोग तुमको काम दे रहे हैं घर घर में, वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, बोलेंगे अभी खत्म, तो तुम क्या करोगे? ऐसे क्यों दूसरे आएंगे? ऐसे अगर तुम्हारी बॉडी को इंजर हो गया तो तुम क्या करोगे? ये सब बहुत ही सेंसिबल सवाल थे,
0: हर तरह से तोड़ने की कोशिश थी।
1: और मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे थे 10 लोग कि नहीं ये मत करना, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो सब बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, उनके पास एक फिक्स्ड करियर है।
0: ये एक बात होती है टेरेंस, मैं बताऊं, मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है।
1: करेक्ट।
0: वो हर चीज से डरता है।
1: हाँ।
0: क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, उसके पास जो रहता है वो खोने के लिए,
1: हाँ,
0: वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो।
1: हाँ, अगर आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोग सपोर्ट मिलता है। हाँ। लेकिन हमारे मेरे डैडी तो मजदूर हैं। उनको सिर्फ वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ पढ़ा लिख कर मेरा बच्चा आगे जाए, वो
0: ये बहुत बड़ी बात है ना। और देखिए, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे, आगे बढ़े। हर बाप की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए। बस आपने 2 कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए।
1: खुश हो
0: तो खुशी मिल गई।
1: हाँ, लेकिन वही चिंता थी कि अरे तू तो डॉक्टर बनने वाला था, फिर तूने माइक्रोबायो बायोकेमिस्ट्री किया, फिर तूने होटल मैनेजमेंट किया, तू फर्स्ट भी आया यहाँ पर, तो फायदा क्या इतना पढ़ के, तू इतना पढ़ता है, तू फर्स्ट लेके आता है, नौकरी भी तुझे हाथ में मिल गई, लेकिन तू ये नहीं करना चाहता है, ये क्या बात हुई? तो मेरे डैडी को समझ में आता कि मैं ऐसा कैसा इंसान हूँ। और
0: फाइनली फिर आपके मदर फादर खुश हुए कि नहीं?
1: नहीं, वो बाद में बहुत सालों के बाद खुश हुए। बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी मतलब 7-8 साल बहुत, जब मैं फिर मैं जब एक्चुअली मैंने इंस्टीट्यूट खोला, फिर मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूंगा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं घर घर। तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है तो मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आना चाहिए। तो मैंने एक स्टूडियो लिया, पैसे खर्च किए, जो भी इकट्ठा किए थे, पूरा मेरी पूरी जवानी जो मुझे पता नहीं कहाँ गई, मैंने दोस्तों के साथ कभी वक्त ही नहीं बिठाया, मैं सिर्फ काम करता गया और जो भी पैसा है अपने करियर में लगा दिया, और वो फिर ठप हो गया क्योंकि लोग आए नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों को, अगर मैं किसी के घर पे जा रहा हूँ तो वो उनकी सहूलियत होती है ना कि मैं उनके घर पे आ रहा हूँ, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है।
0: एक और बात होती है टेरेंस, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है, बिजनेसमैन नहीं होता।
1: नहीं होता। तो वो अकल बाद में फिर जो जमीन पर उतरा, मैं उड़ रहा था कि मेरा ऐसा होगा। मैं सच में ना, जो मैं 21-22 साल का था, मैं मेरे सपने, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होगा, फिर मैं बड़ा शो करूंगा, फिर लोग मेरे पास आएंगे, देखें कि मैंने कितना अच्छा काम किया है, और तो ये बड़े बड़े मेरे ख्याली पुलाव चलते रहते मेरे दिमाग में, फिर मेरी एक बड़ी फिल्म आएगी, लोग मेरे पास आएंगे और बोले कि मेरी फिल्म करो, तो मेरा दिमाग सपनों में रहता था।

0: अच्छा डेरे साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैंने जवानी में पूरा अपना इस तरह से वक्त निकाल दिया, रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो गाने बचपन में सुना करते थे, वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं आपके जहन में
1: जरूर,
0: लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे फहरिस्त पूछी जाए तो किस तरह के गाने होते थे? किस मूड में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहां अभी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तुम हम इतना पढ़े लिखे हो, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या थोड़ी सी उदासी में घर से निकले, तो कहीं कोई गाना पीछा करता था विविध भारती का?
1: बहुत सारे गाने थे सर, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था,
0: लोकल ट्रेन
1: और मुझे, सॉरी ये कहना नहीं चाहिए रेडियो पे, लेकिन मुझे
0: हैंड हेल्ड पकड़ के
1: मुझे गर्मी बहुत जल्दी होती है, तो मुझे हवा चाहिए, तो वो हवा कहना, और मेरे बाल लंबे हुआ करते थे, तो मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक हाथ
0: पकड़
1: के कई बार, आई एम टेलिंग यू, मैं सच कह रहा हूँ कि कई बार पता नहीं किसने मुझे बचाया है, फिसलते फिसलते मैं बचा हूँ। तो ये मेरे 5 साल ऐसे ही गवाए हैं, और मैं उसके बाद भी ट्रेन में ही ट्रैवल करता था क्योंकि वो फटाफट हुआ करता था।
0: दोस्तों ये जो टेरेंस जो कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ सुनिए, इसे सिर्फ सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। इस पर अमल बिल्कुल नहीं करना नहीं है आपको, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। मुंबई में हर दिन कई कई बच्चों की जान इससे जाती है, कई अपने जीवन में अपाहिज हो जाते हैं। तो इसको सिर्फ सुनिए और कान दूसरे

0: ध्यान से निकाल दीजिए। अब आगे बढ़
1: नहीं, सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या जब भी मैं अपने आप को खुश करना चाहता था, या मैं जनरली मैं उदास नहीं रहता हूँ, मैं ऑलवेज हंसमुख रह करता था, मैं वो गाने सुनता था या वो गाने गाता था, सुनता भी नहीं था, गाता था, जो मेरे दिल को हल्का करे। लाइक मैं बताऊं कि एक गाना है देवानंद सर का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ा। ये ऐसा गाना मुझे दिल के बहुत करीब है।

0: ये गीत तो हमने सुन लिया,
1: हाँ
0: जिंदगी के जो कश्मकश रहती हैं उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट तो आप नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए, किसी तरह के नशे से
1: अगर
0: बिल्कुल
1: आपने,
0: अपने आप को बचा के रखना
1: हाँ
0: चाहिए।
1: नहीं, ऑल्सो अगर आपने लाइफ का नशा पिया है ना, और जो लाइफ में मज़ा है और जो जिज्ञासा में मज़ा है, लाइफ को खोजने में मज़ा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे फीके पड़ जाते हैं।
0: और फिर आप तो पहले ही से वो स्टेज वाले नशे में
1: हाँ,
0: धुत
1: धुत
0: थे,
1: हैं।
0: आज भी
1: तो
0: है।
1: ऐसा मैं ये भी कहूँगा कि मैंने 35 साल की उम्र में, 35 35 की उम्र में मैंने बिना शराब की बूंद चख ली। फिर मैंने, लोग सिगरेट पीते थे, मैंने देखते क्या है, तब तक मुझे कोई थे ही नहीं, मतलब मन पूरा मेरा ध्यान डांस में था, और देखा क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं महसूस पड़ रहा है, लेकिन कि जो नशा लाइफ में है और जीने में है उससे बहुत कम है, तो कभी वो लत या लगाव लगाई नहीं।

0: अच्छा टेरेस, अब हम उस पर आते हैं जब आपका जो काम था वो टोटली कमर्शियल हो गया, अदर देन इंस्टीट्यूट डांसिंग
1: करेक्ट.
0: क्लासेस के अलावा
1: हाँ
0: फिल्मों में कहीं ना कहीं अंदर आपकी ये इच्छा तो रही होगी
1: करेक्ट.
0: कि मैं भी बड़े पर्दे पे नजर आऊं, मैं भी डांस करूं. अब अगर मैं सच्ची बात करूं, ईमानदारी की बात करूं, तो आप चेहरा मोहरा फिजिक हर तरह से एक अच्छा खासा हीरो मटेरियल आप रहे हैं, आज भी हैं, आज भी है ना.
1: शुक्रिया.
0: तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि मैं हीरो ट्राई करूं?
1: देखिए, आज की तारीख में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, क्या कहाँ जाना है, कास्टिंग कहाँ होती है.

0: मेरे ज़माने में मुझे कोई समझ नहीं थी, और कोई गॉडफादर नहीं है या कोई समझाने वाला नहीं है कि अच्छा ऐसा ऐसा करो। तो कई हद तक मैं सोचा रहा कि ये शायद मुझे कौन लेगा, मुझे कौन काम देगा।
1: लेकिन आप चाहते थे हीरो बनना।
0: हीरो नहीं, मुझे थिएटर का बहुत शौक था और
1: अच्छा।
0: मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। लेकिन और कुछ म्यूजिक वीडियोस भी मिले, जैसे शान का एक गाना रीमिक्स, तभी रीमिक्स का गाना बहुत चलता था। शान ने गाया था, माना जनाब ने पुकारा
1: वाह
0: नहीं,
1: वाह।
0: उन्होंने एक गाना रीमिक्स किया था।
1: हाँ
0: उसके मेन किरदार जो मेन मॉडल जो मॉडलिंग जो
1: हाँ
0: मेन कैरेक्टर है वो मैं प्ले कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस मैंने किए बड़े बड़े जाने माने डायरेक्टर के साथ। लेकिन कभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, कहाँ जाऊँ, वो मुझे समझ नहीं थी। और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपनी परिस्थिति आर्थिक स्थिति जो है उसको कैसे मैं अच्छा बनाऊँ, वो इसी में लगा पड़ा रहता था। और ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और अच्छा करके जाएगा और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो कभी कोई सपोर्ट ना कोई बताने वाला कि अच्छा ठीक है तू इसमें अभी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई था नहीं। तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिले नहीं है। जो था सही था, अगर होना था तो हो जाता। अब जाके मैं समझता हूँ कि मेरी स्थिति जो है अच्छी है, तो अब जाके मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ और जो ऐसे काम मिल रहे हैं जो एक्टिंग के माध्यम में है, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मुझे एक जरिया मिल रहा है फिर से उस उमंग को जीने का। लेकिन उस वक्त पे मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था और ना ही मेरे जहन में ये था कि मैं बन जाऊंगा। मुझे लगा कि यार जो फैमिलीज आती थी, ट्रेडिशनल फैमिलीज आती थी, उन्हीं के बच्चे सपूत जो हैं वो आगे बढ़ते थे। तो वो कभी वो जो अरमा भी था वो वहीं के वगैरह। तो मैंने बोला कि ये शायद इससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैंने अपने आप को सीमित किया। किसी की गलती नहीं है,
1: फिर
0: मैंने
1: आपको एक कोरियोग्राफर की हैसियत से काम कैसे
0: कैसे
1: मिला? क्या आपने किसी को असिस्ट किया? बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम रहे हैं।
0: तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू कर दिया। और जब आप डांस सिखाना शुरू करते हैं और फिर 18 या 19 साल में मैंने कॉलेज के फंक्शंस में कोरियोग्राफ भी करने लगा, तो मेरा नाम लोगों में सुनने में आया था कि हाँ ये कोरियोग्राफ करता है, स्कूल कॉलेज फंक्शन सब दूसरे कॉलेजेस को भी कोरियोग्राफ करता है। तो जो दूसरे कोरियोग्राफर्स थे वो मुखर जाते थे मुझे यूज़ करने के लिए, ये तो कोरियोग्राफर है, ये तो अपना काम देख के निकल जाएगा कहीं, तो वो डर जाते थे। मैं अगर चाहूँ भी तो उनके साथ काम करूँ, बोलते नहीं क्योंकि तुम तो कोरियोग्राफर हो, तुम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर होता है ना कि कहीं वो टेरिटोरियल हो जाता है। तो फिर मैं कभी गया नहीं किसी के साथ, किसी के अंडर काम नहीं किया। और फिल्म जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, एक छोटा सा कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था, वो भी मेरे नसीब में ऐसा हुआ कि रीना दत्ता जो आमिर की पहली बीवी थी वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की। तो उनको चाहिए था एक ऐसा कोरियोग्राफर जो वॉल्स, जो टेक्निकल वॉल्स है, वो कोरियोग्राफ करके दिखाए।
1: वो जो अंग्रेज लड़की डांस
0: अंग्रेज
1: करती
0: लड़की
1: है
0: नाचती
1: वो
0: है,
1: वाला
0: माय
1: डांस
0: हार्ट इज, हाँ
1: सेक्शन।
0: वो वाला। हाँ, तो मैं रीना को बोला कि वो मेरी स्टूडेंट रहती थी क्योंकि वो आती थी सीखने के लिए। मैं अभी फिटनेस में भी चला गया था कि डांस और फिटनेस का दौर चल रहा था, तो मैंने अपना हाथ फिटनेस में भी डाल दिया और मैं औरतों को वेट लॉस करवाता था।
1: उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी
0: हाँ,
1: पहले इसको।
0: इसको हाँ। तो रीना मेरी वेट लॉस वाली स्टूडेंट थी, वो मेरे पास आई थी वेट लॉस करने के लिए। मैं उसका पर्सनल ट्रेनर बना और उन्हें मुझे ये प्रस्ताव पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना कोरियोग्राफ करें, ये जो थोड़ा सेक्शन है, और बस वॉल्स करना है, आपको तो आता ही होगा, आप तो ईसाई धर्म के हो। तो मैंने कहा कि ईसाई धर्म का ये मतलब नहीं कि मुझे वॉल्स आता हो। ये तो तुम करते हो तुम्हारे पार्टीज में से। नहीं, मुझे नहीं आता ये सब, ये तो एक अलग स्टाइल है। नहीं, ये तुम पाना चाहिए क्योंकि हमारे फिल्मी कोरियोग्राफर्स नहीं कर पाएंगे, और जिस तरीके से तुम चलते हो, जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, लगता है कि तुम कर पाओगे ऐसे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। फिर एक बार तुम आमिर से मिल लो। मैं आमिर से मिला, आशुतोष जी से भी मिला, और उन्होंने मुझे और भी डरा दिया कि उन्होंने कहा कि नहीं, वॉल्स तो हमें चाहिए लेकिन हमें ना वो 18th सेंचुरी, क्योंकि हमारी फिल्म 18वीं सदी में
1: का कहानी है।
0: कहानी है, तो 18वीं सदी की जो वॉल्स हुआ करती थी, वियनीज वॉल्स, वो हमें चाहिए।
1: बताइए।
0: तो मैं तो वहीं पर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पहले तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं कैसे शूट करते हैं, मुझे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
1: मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूं, कि आप कोरियोग्राफी करते थे
0: हाँ, लेकिन
1: स्कूल्स
0: स्टेज,
1: में
0: हाँ,
1: और
0: फिल्मों के लिए
1: कॉलेजेस
0: नहीं।
1: में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी

0: अलग होती है,
1: अलग
0: उसके
1: होती है,
0: नुएंसेस अलग होते
1: एकदम
0: हैं,
1: अलग सर,
0: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं, वो
1: एब्सोल्युटली
0: तो आप जानते नहीं थे।
1: एब्सोल्युटली
0: फिर
1: नहीं
0: आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया, ये सवाल पे मैं आने वाला था, आप खुद ही आ गए, तो आप
1: हाँ,
0: दोनों चीजों को जोड़ के
1: साथ में
0: बताइएगा।
1: जरूर। तो फिर मैंने मेरा एक उसूल है कि जो चीज आपको नहीं पता वो सीधा सामने बोल दो, सच बोलो, क्योंकि सच बोलोगे तो सब कुछ ना कुछ हल मिलेगा। तो मैंने सीधा रीना को बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता और ना ही मुझे फिल्म, मैंने कभी फिल्म यू नो कोरियोग्राफ किया है। तो मैंने रीना को यू नो रूम में बता दिया कि ऐसा ऐसा है। रीना ने मुझे फिर से रूम में बैठा दिया आमिर और आशुतोष के साथ, और उन्होंने बोला कि देखो इसको कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, करेंगे। तो आशुतोष ने बोला क्या है आप बताओ। आशुतोष सर वॉज सो नाइस टू मी, ही सेज डरने की बात नहीं है, तुम बहुत डरे हुए हो, आप डरो मत। इट वॉज सो स्वीट, क्योंकि मैं बहुत आई थिंक वॉज ओनली 24 ईयर्स। सर मैं नहीं करना, मैं बोल रहा मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना है। सर क्यों डरे हो, आपको आता है, मैं सीख लूंगा, लेकिन सर मुझे मुझे पता ही नहीं फिल्मों में कैसे शूट किया जाता है ऐसे। वो हमारी जिम्मेदारी, और हमारे पास अनिल जी है, अनिल मेहता जी है, वो कैमरा मैन है, सबसे सीनियर्स, हम संभाल लेंगे, आप हमें कोरियोग्राफी और डांस दिखाओ, कैसे इसको शूट करना है वो हमारी जिम्मेदारी। अरे ठीक है, आमिर भी बोला कि आप डरो मत, आप करो, यू बी फाइन। तो फिर मैंने वो स्टाइल सीखा। मैं एक सलोमी रॉय कपूर की एक मोहतरमा थी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर की माँ है। हाँ, तो वो सिर्फ वो जानती थी वो पर्टिकुलर स्टाइल। तो मैं उनके घर गया, नेपिन सी रोड का घर था मलबा हिल में, मैं गया, मैं उनको बोला कि मुझे सीखना है, और उन्होंने ठीक है मैं सिखाऊंगी। तो मैंने भर्ती किया अपने आप को, सीखा, फिर मैंने वही चीज़ कोरियोग्राफी में डाली। गाना ए आर रहमान का गाना था, वो मैंने लिया, कोरियोग्राफ किया, फिर बुझ गया। वहाँ पे उन्होंने मुझे अनिल मेहता सर के साथ ही कमरे में बिठा दिया, और अनिल मेहता को मैंने साफ साफ कहा, सर मुझे कुछ नहीं आता कैमरा के बारे में, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँगा सेट पे, मैं क्या, मुझे एक्शन भी बोलना नहीं आता कि कब एक्शन बोलूँ कब नहीं, कब यू नो नगाड़े को बोलूँ कि रोल साउंड, ये मैंने सुना है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। सर कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद एक बुक दिया, इट्स कॉल्ड द 5 C's ऑफ कैमरा। अगर कोई भी डांस के दीवाने हैं या कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये एक्चुअली कोरियोग्राफी के बारे में नहीं बताता, लेकिन कैमरा के बारे में बताता है, और ये क्या बोलते हैं ना, ग्रंथ है। अगर आपको कैमरा के बारे में सीखना है, दिस इज द बुक फॉर टू गो फॉर द 5 C's ऑफ कैमरा। तो अभी मुझे पढ़ाई लिखने में बहुत शौक है, तो मैं वो बुक को रातों रात खा गया सब कुछ, और मैंने नोट्स लिख दिए कि जो मुझे समझ में नहीं आया मैंने नोट्स कर दिए। मैंने अनिल मेहता सर को बता दिया कि ये मैं समझ गया, ये नहीं समझा, आप मुझे बताइए, ऐसे आप 2 दिन मेरे साथ आइए और देखिए क्या हो रहा है। मैंने देखा, समझ गया, और मैं बहुत फटाफट समझ जाता हूँ। तो वो मेरी मतलब मैं समझता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई दिखाया है तो मैं फटाफट समझ जाता हूँ। तो मैं सेट पर रह के मैं सीख गया, और फिर मेरी 3रे दिन मेरी शूट लग गई, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
0: एक तो और
1: बड़े
0: इतनी बड़ी
1: कलाकार
0: बड़ी फिल्म थी,
1: हाँ
0: बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर
1: हाँ।
0: की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
1: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म
0: हाँ।
1: फिल्म बन रही है।
0: लेकिन उसके बाद
1: हाँ।
0: जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी
1: हाँ।
0: और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा
1: हाँ।
0: तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
1: एक्चुअली मैं कहूंगा कि यू नो मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया है सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली। तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया
0: वो
1: था।
0: जाहिर सी बात है ना।
1: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूँ। लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे, वो लोगों के नजर में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया।

ये था इस फिल्मी गपशप का पहला भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप।

0: कभी खुशी कभी हम है अकेले हम अकेले तुम कभी खुशी कभी हम मुझे कुछ कहना है
1: क्यों कहना है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई

0: बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, 2 principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palm olein, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 gram, 500 gram, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnaw has said that resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Suvendu Adhikari at Nabarna in Kolkata, Mr. Vaishnaw said that 14,205 crore rupees have been allocated to West Bengal in the railway project for 2026-27. He said 10 Amrit Bharat stations have already been completed in the state, while 9 Vande Bharat Express trains and several Amrit